उपरया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जननम पिता लोक सुत बैंता कोयरों किसकी तरया सिर से रिजक समाही ठाकुर कहे मन पाओ करया ऊड़े ऊड़ आवे सै कौसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाइए।

आइए तेरा अंत ना परब्रया राग यासा महला चौथा सुपुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुपुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहें सब त्या वहें तुझ जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वहीं हर दया वहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से व्या जिन से व्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी।

जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुझे आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुझे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुझे आपे सिरि सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सिक्का जान होई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सवनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग वाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया वो सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल वियोग मिल विछड़िया संयोगी मेल जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पहले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहो ना हो जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरना जैना तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानक दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया।

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तावाया सह सेती मनवजियां वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगाबो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सुना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या ना ही हर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवैया कर शान सुख मन बसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैसक होआ तित कर अन्न हद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए आ उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा भर उरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्हाद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मुंदा मणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो।
अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अधारो, जे को खावे जे को पुंचाए, तिसका हुए उधारो। एहे बस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरी है, सब नानक ब्रह्म पसारो। स्लो महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे आ, तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे आ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गुर सेवी अहिंसा सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिवत खसम दी नूरे अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह हो माल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जैसरी महला चौथा

0: प्राण जाएंगे छूट। और जदों प्राणा दे छुट्टण दा समा आ गया ना, जदों ये समा आया फिर कुछ नहीं हो सकता। तब जानोगे अंध गवारी, ये जड़े अकल दे अंधे आ जां मूर्ख ने गवार, ये उदों होश विच आउणा जदों अख खुलनी है, उदों समा नहीं रहना। इसलिए महाराज कहिंदे जाग जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहां गाफल सोया। तेरा समा जिंद ये अवसर तेरे हथों निकल रहा है। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीतेओ, जात है कहेओ मान ले मेरो। कला भेख धार के कुछ नहीं होना, बेस बनाना पैना अंदर। नाम दा बीज कली मिट्टी की करेगी, उदे विच बीज भी तो चाहिए फल वास्ते। कली मिट्टी की करेगी, और कला शरीर मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी की करेगी जे अंदर असी कर्म रूपी बीज ही नहीं अंदर पावांगे। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। भेख नहीं किया इतने, वेस किया, वेस अंदर। भेख बाहर हुंदा है, वेस अंदर हुंदा है। इसलिए महाराज जी समझाउंदे हन,
1: यहां ते सत नाम को सिमरन।
0: इस करके भाई सच्चे नाम दा सिमरन करदे रहा करो। अज वक्त मिलिया, कल पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, कोई गरंटी दे नहीं है साडे कोल कि कल वक्त मिलेगा। इत्थे ते पल भर दी खबर नहीं है। बंदा गल्लां करदा करदा अखां मीट जांदा है। इस वास्ते कल दी खबर नहीं है। जप मन सत नाम, सदा सत नाम। इस वास्ते सच्चे नाम दा सिमरन करदे रहना चाहिदा है।
1: लिव लगाए कर ठान है निस दिन,
0: निस दिन अपनी सुरत नू निरंकार दे नाल जोड़ के रख। हां दुनियावी काम करने हैं करो, दिहाड़ी करो अपनी, दुकान ते जाओ अपना बिजनेस करो, जो तुसी दुकानदारी करदे हो करो, परिवार पालन लई बच्चियां दा पढ़ाई लिखाई लई जो आपां करदे हां काम काज करो। उत्थे नहीं महाराज ने रोकिया, सुरत उहदे नाल जोड़ के रखो। बस हाथ पाओ कर काम सब चीत नरन, तुहाडा चित उहदे वल होना चाहीदा है। हाथ पैर अपने काम काज लगाओ, शरीर ये तो नहीं गया महाराज ने बह जाओ हाथ ते हाथ धर के। किरत करो अपनी, किरत करके नाम जपो, नाम जप के फिर दोवां नूं वंड के छकना भी सिखो। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहिंदे तुहाडी लिव सदा भावें दिन है भावें रात, तुहाडी सुरत उहदे नाल जुड़ी होनी चाहीदी है।
1: बहर करिया सब कैसी करे,
0: जिद्दां तुसीं काम काज अपने करदे हो करो, खेतीबाड़ी करदे हो करो, दुकानदारी करदे हो करो, अपना व्यापार करदे हो करो, जो तुहाडी नेक कमाई है वो करो, पर तुहाडी सुरत निरंकार नाल जां शब्द नाल सुरत जुड़ी रहे, शब्द अंदर चलदा रहे। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितार। शरीर उठदा है उठण उठण दियो, बैठदा बैठण दियो, चलदा चलण दियो, सौंदा शरीर सौण दियो, ए मन तुझे चितारे। मन उनू चेता करदा रवे, मन नू नहीं सौण देना। शरीर तां जे कुछ पल आराम करेगा रात नू सौवेगा ताई ये हल्का फुल्का होएगा। जे नींद नहीं आई बंदा सुता नहीं, शरीर भी जड़ा वो बैलेंस बिगड़ेगा ते दिमागी बैलेंस भी बिगड़ेगा। शरीर दा आराम जरूरी है पर मन दा नहीं, मन जागदा रहना चाहिदा है। सतगुरु महाराज जी अपने प्यारियां नू संबोधन हुंदिया समझा रहे ने, इसलिए लिव ला के नाम जपो। जां तीन सिद्धांत जड़े पक्के करा रहे हैं, किरत करो, नाम जपो, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
1: ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਧਰ,
0: ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1: ਜਾਣੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੀਤ,
0: ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਗੇ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ

माता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जिय महे हितानी बल बंच छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभे अंतर जामी सील धर्म दया सुचना।